0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabil bala murga. Mirchi murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या
3: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
2: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट वाला।
2: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
1: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
1: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
1: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट सर, ये वाला गया सेंड। ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल मॉडल, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पागल। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: मिर्ची सुनने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है, म्यूजिक ऑटोमेटिक शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।
1: ओम

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Hi, darling. I want to dance with you. Dance. Dance of love. Dance.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।
1: You are vibing with Oyontika and DJ Richard on Club Mirchi.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे. क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्डन मिर्ची और योंदिगा. We are officially past the point of pretending this is a calm evening. It's not. And after all that, we are going straight for the adrenaline because apparently relaxation was never the plan.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: दूसरा गाना सुपर हिट
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट
3: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है पता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पड़ी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची ऑयल टिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोनिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है पता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन। वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची विद ऑयंतिका एंड डीजे रिचर्ड ओनली

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंदिका के साथ. वीकेंड रूल नंबर वन, डोंट ओवरथिंक योर प्रॉब्लम्स. रूल नंबर टू, इफ यू एब्सोल्युटली मस्ट ओवरथिंक, डू इट विद कैल्विन हैरिस प्लेइंग लाउडली.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है पता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन।

Hi, darling. I want to dance with you. Dance. Dance of love.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन

कोई बहाने की जरूरत नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है। म्यूजिक ऑटोमेटिक, शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टेका।

Welcome back, party people. Club Mirchi जा रही है DJ Richard Mirchi और यूं तक आपके साथ. Weekend sunny हो या rainy, party mood sunny तो होना ही है. तो let's see a sunny together.

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोनिका।

high, darling. I want to dance with you. Dance. Dance of love.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी यस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट लेडीज एंड जेंटलमैन।

स्वेटी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे. क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्डन मिर्ची और यों देगा. We are officially past the point of pretending this is a calm evening. It's not. And after all that, we are going straight for the adrenaline because apparently relaxation was never the plan.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है पता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौम तक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

और म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पड़ी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका।

0: 쉬운가?
1: 클럽 매치 only on 매치. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: 나 चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go
7: on a ride.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन।
0: Club Mirchi.

बहाने की जरूरत नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है। म्यूजिक ऑटोमेटिक, शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।

होता कई बार है एंड वीकेंड पार्टी में क्रश भी कई बार हो ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, बस यही तो करते हैं हम तेरे प्यार में।

टीचर रिचर्ड एंड मिर्ची आई ऑन टेक अस स्टार्टिंग योर वीकेंड. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो, या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए. दैट इज क्लब मिर्ची. हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर्स द साइन ऑफ ट्रैक. इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन. टाटा.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
0: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
0: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियस नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट रेडियो मिर्ची।
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

गाना बजा दूं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: pietra la burka. Milci, burka.
2: हेलो,
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
2: तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा,
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
2: अच्छा, लेकिन ना, मैं समझ रही हूँ।
3: हाँ, क्या समझ रही
2: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर सविता।
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरे ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
2: हूँ।
4: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। थोड़ा सा
2: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
4: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता।
2: भाई, भाई, भाई।
0: तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: ए? वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो स्टार्ट्स इन
2: हिट गाना सुनना आसान है, ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ। और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ। किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया और कैसे एक गाना फिल्म से निकल कर हमारी जिंदगी में उतर गया। Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूँ सुरेन, गाने आपके, कहानियाँ मेरी, and we kickstart the countdown with गाना नंबर 20, ऊंचा लंबा कद, the rehashed version from Welcome to the Jungle.
3: Number 20.

फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जैसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने। अरे

या फिर बाजीराव सिंघम। Now, these are Ajay Devgan's two most iconic characters. लेकिन मेरे लिए personally विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए VFX, explosions इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। And before I get to Drishyam, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी happens to be गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, well Drishyam की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। This is Vingansa, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिर खान के शब्द, from Drishyam, the conclusion। Number 18.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
3: अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है
2: ये भेज दें सर बीप।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
3: अरे बावले हो गए हो क्या
2: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
3: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
3: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए।
3: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
3: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
3: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंड। ठीक है सर।
3: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
3: अबे ओ पागल ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Shararat in the voices of Jasmine Sandlars and Madhuvanti Bagchi. Ekdam unapologetic Bollywood madness. Aur shayad isliye ye gana yaad reh jata hai. Lekin ek gana countdown se bahar ho chuka hai. Iska exit mujhe genuinely surprise karta hai. To phir aao. Now, आवारापन 2 के 3 गाने अभी भी चार्ट्स में हैं, लेकिन आवारापन की ओरिजिनल फिल्म का ये गाना तो फिर आओ अब इस काउंटडाउन पे नहीं है. एंड मुझे लगता है इसका एक रीजन है. कभी कभी किसी गाने को अच्छा सिंगर नहीं सही आवाज चाहिए होती है. उसमें एक खास मैस्कुलिन वजन की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज जो हार्ट ब्रेक को फील भी करे और कैरी भी करे. Somehow I always thought के यार ये गाना एक सिंगर की आवाज में बहुत अच्छा लगता. And that singer is Fahim Abdullah. अगर कोई इस गाने को वो पुरानी रूह, वो darkness और वो अच्छी पकड़ दे सकता था, then in my eyes I thought it could have been Fahim. और फिर Fahim ने अपने social media पर इसका एक cover गा के डाल दिया.

0: बस दर्द वही है, लेकिन आवाज का वजन बदल गया और गाना भी। और शायद इसलिए आवारापन टू का म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है। ये पुरानी फिल्म को रिपीट नहीं कर रहा है, ये अपनी आवाज ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्होंने तो फिर आओ गाया है इन आवारापन टू, उनका डेब्यू सॉन्ग हैपेंस टू बी वे जुनून, कंपोज्ड बाय दिस जीनियस कॉल्ड मिथुन और लिखा है सईद कादरी साहब ने। दिस वन इज अ नंबर 15 फ्रॉम आवारापन टू।
1: नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: सांसों की माला पे मिर्जापुर की पूरी एल्बम में मेरा सबसे फेवरेट गाना। एंड इसकी कहानी बहुत पुरानी है, मीराबाई और कृष्ण जी के बीच जो एक समर्पण की लोक कथा है, ये कॉम्पोजिशन उस एहसास से जुड़ा हुआ है। और ये मास्टरपीस तुफैल होशियारपुरी नाम के कवि को एट्रिब्यूटेड है। लेकिन जिस आवाज ने इस कॉम्पोजिशन को पूरी दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना दिया, वो आवाज थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की। और नुसरत साहब को याद करते वक्त एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, उनकी कला को सल्यूट करना किसी मुल्क की सियासत को सर्टिफिकेट देना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक महान आर्टिस्ट का हिसाब चुका रहे हैं, उस इन्फ्लुएंस का जो उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक पर छोड़ा। थिंक ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, निट खैर मंगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है मेरे रश के कमर, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, मेरा पिया घर आया। यार कुछ रिक्रिएट हुए, कुछ की ट्यून्स को नए लिरिक्स, नए सिचुएशंस और नए नाम मिले, कुछ तो चुराए भी गए, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि नुसरत साहब की मेलोडिक वोकैबुलरी हिंदी फिल्म म्यूजिक का हिस्सा बन गई। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है एआर रहमान का एक गाना, जो उन्होंने नुसरत साहब के एक बहुत ही मशहूर गाने सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना से प्रेरित होकर मणिरत्नम की फिल्म गुरु के लिए एक कॉम्पोजिशन बनाई थी। और वो गाना था तेरे बिना, रिटन बाय गुलजार साहब, संग बाय एआर रहमान हिमसेल्फ। दिस हैपेंस टू बी माय पिक ऑफ द वीक।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 12।

0: तमन्ना भाटिया,
1: वी हैव अ प्रॉब्लम। एंड पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे तमन्ना भाटिया के डांस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये गाना स्त्री का बहुत ज्यादा पसंद है।
2: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए।
1: एंड देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये वाला गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके अलावा भी देयर क्वाइट अ फ्यू डांस नंबर्स। एक और याद आ रहा है यार, रेड 2 में गाना आया था नशा करके, एंड तमन्ना इन गानों में कमाल करती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड के बेस्ट डांस नंबर्स की बात करोगे तो तमन्ना का नाम डेफिनेटली टॉप 3 स्पॉट्स में होगा। प्रॉब्लम गानों से नहीं है, प्रॉब्लम इमेज से है, क्योंकि तमन्ना साइंड अप फॉर दिस अपकमिंग फिल्म कॉल्ड वन अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहाँ पे तमन्ना का एक प्रॉपर एक्टिंग रोल है। लेकिन उसका एक गाना आया है कॉल्ड ठुमक ठुमक, एंड वहां पर भी तमन्ना भाटिया इज डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन दी सॉन्ग्स दैट आई जस्ट मेंशन। वही ग्लैमर, वही अदाएं, वही सेंसुअलिटी, वही स्क्रीन पर्सोना। देखो, अगर तमन्ना सच में चाहती थी कि ऑडियंस उनको एक पर्टिकुलर इमेज में ना देखे, तो फिर उनको उस इमेज से जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इमेज इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने का फैसला एक एक्टर को करना पड़ता है। आप एक फिल्म में कैरेक्टर बनकर आओ और अगले ही मिनट ऑडियंस को वही पुरानी तमन्ना दिखा दो जिसे वो डांस नंबर्स में देखने की आदत डाल चुके हैं, तो फिर ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, वो बस वही देखेगी जो आप उसे बार बार दिखाते आए हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप है। पहले वो आपकी एक इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को वो हिट बनाता है, और जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो वही इमेज आपको वापस खींच लेती है। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं जिनसे एक्टर को नहीं पूरी जेनरेशन को कम्पीट करना पड़ता है। श्रीराम की छवि भी उन्हीं में से एक है। पिछले हफ्ते जिस भक्ति की प्रार्थना ने हमें पहली बार दर्शन दिए थे, इस हफ्ते वो नंबर 11 पर है। ये है जय जय राम, राम रामायण।
3: नंबर 11।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इधर।
2: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
2: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
2: कोहली।
1: अरे तू भी यस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता।
2: भाई, भाई, भाई।
1: तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: है? वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट। Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बड़जात्या ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बड़जात्या ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल यह है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बड़जात्या से।
1: Somewhere I feel complete now. Even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there, I have two granddaughters at home. So somewhere up, main kuch dena chahta hoon. Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director wohi hota hai jo kuch kehna chahta hai. So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, main kahin phansta hoon har film mein because main goodness mein aur goodness karna chahta hoon. To wo mere apne issues hai, but this is one of my most progressive and favorite films.
0: Generations ko saath rakhna aur apni values ko compromise kiye bina unhe aaj ke cinema mein lekar aana. Shayad Suraj ji ki sabse progressive baat yahi hai ki unhone waqt ke saath apni values badalne se inkaar kar diya. Aur ab isi duniya mein melody lekar aa rahe hain Bollywood ke ultimate hit machine, the man who collaborated with Suraj Barjatia on Prem Ratan Dhan Payo, Himesh Reshamya. नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रेया घोषाल। नंबर 9।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7।

तवाही नाम का गाना खत्म जरूर हुआ है, लेकिन असली तवाही तो सलमान खान ने मचाई हुई है। भाई ने बिग बॉस पर उन ट्रोल्स और उन जर्नलिस्ट को सीधा निशाने पे ले लिया जिन्होंने क्रिटिसिज्म और कैरेक्टर असैसिनेशन के बीच की लाइन ही मिटा दी थी। फिल्म बुरी है तो बोलो, एक्टिंग खराब है फिर भी बोलो, अगर वजन मेरा बढ़ गया है उस पर भी बोलो, लेकिन पर्सनल होने का लाइसेंस वो किसी को नहीं मिला है। और फिर सलमान खान ने उन जर्नलिस्ट को भी कॉल आउट किया जो एक्ट्रेसेस की तस्वीरें खींचकर उनके बॉडी पार्ट्स को जूम करके सोशल मीडिया पर बेचते हैं। उसे जर्नलिज्म कहना जर्नलिज्म की इंसल्ट होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं है, दैट इज चीप वॉयरिज्म। और जर्नलिस्ट या पत्रकार नाम का शील्ड पहन लेने से वो रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाता। और मुझे सबसे ज्यादा मजा एक आयरनी में आता है, बॉलीवुड में लाइन क्रॉस करना सलमान खान से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बार भाई ने लाइन क्रॉस नहीं की, भाई ने एक नई लाइन खींच दी है। और जब कोई इंडस्ट्री के अंदर से इस टॉक्सिक कल्चर को रोकने की बात करता है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। बाय द वे, द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द चार्ट्स इज चुनरी चुनरी, जो है फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, लेकिन ओरिजिनल वाले में सलमान भाई का स्वैगर याद है। नंबर 6।

0: तो वेल, आज उसी भाई के नाम, सलमान खान के नाम मेरा रीवाइंड ट्रैक। वो बात जो जर्नलिस्ट एंड ट्रोल्स की क्लास लगाने के बाद वो बिंदास बोल सकते हैं। बॉलीवुड, मैं हूँ हीरो तेरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची। हेलो,
2: हेलो डॉक्टर, सविता से बात करा दिए।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर, ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
2: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही हूँ। देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5।

0: अमित त्रिवेदी का ये गाना बिना किसी एफर्ट के मूड हल्का कर देता है यार। लेकिन रोमांस की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग चेंज जरूर आया है। पहले रोमांटिक गाने आते थे और उसके साथ में लव स्टोरी भी मिल जाती थी। प्राइम एग्जांपल फॉर एवर विल बी दिस सॉन्ग।
1: हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना।
0: फिर हमें रणबीर और दीपिका दिखे। सिर्फ पिछले साल हमें एक लव एंथम भी मिला।

आज जब इन गानों को सुनते हो तो एक कहानी सामने आ जाती है, लेकिन आजकल कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको कहानी देते ही नहीं, इनफैक्ट आपको जगह देते हैं अपनी कहानी बनाने की। वारू फॉरएवर ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि 2018 में जब मिर्जापुर आई थी ये गाना उसी टाइम पे हमने पहली बार सुना था, लेकिन ये गाना अब सीरीज से बाहर निकल गया है। कपल वीडियोस, हार्टब्रेक एडिट्स, वेडिंग मोंटाजेस, अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी यादें। मिर्जापुर ने सिर्फ गाना दिया था, इंटरनेट ने उसका रोमांस लिख दिया। और शायद आज रोमांटिक गानों की डेफिनेशन भी बदल रही है। पहले गाना आपको लव स्टोरी दिखाता था, आज गाना आपको अपनी लव स्टोरी दिखाने की जगह देता है, क्योंकि एवरीवन इज द डायरेक्टर ऑफ देयर ओन लव स्टोरी। और अपनी कहानी में सब शाहरुख खान है। और वही गाना रोमियो शेख खुशाल की आवाज में मिर्जापुर द मूवी में एक नई जिंदगी लेकर आ रहा है। ऑन नंबर 3, probably the fastest climber of the Mirchi Top 20, ye hai Varun Forever. Number 3.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 2.

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना आई एम श्योर कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना, लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ। बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, एंड दैट ब्रिंग्स अ क्लोज टू दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20। ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यहीं ऑन द मिर्ची टॉप 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nici. Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Nici, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे 4 बजे सर, सैटरडे 4 बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
2: सर। संडे 3 बजे दिन में सर। मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

छड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तू गई।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
0: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या
2: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
1: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट वाला।
1: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
3: मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बात समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ओ पागल मॉडल, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी हंस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर, ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: न, एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी,
1: हाँ हाँ,
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
2: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।

0: अच्छा
1: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
0: अच्छा कभी लेकिन नहाने मैं समझ रही हूँ।
1: हाँ क्या समझ रही
0: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
1: डॉक्टर सुनीता?
0: हाँ जी
2: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोचूंगा। देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
0: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
2: बिल्कुल मैं कुकड़ू को बोलूंगा लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
0: कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज।

0: सारा मेरा। उप्स।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता।
1: भाई, भाई, भाई।
0: तुम दोनों गग गोल्ड हो।
1: ए? वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
1: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
2: इट्स हॉट।

किताबों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
2: पहले अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। इधर
1: हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट जब

0: Market Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala.
2: Yabala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
3: तो सविता बोल रही हूँ।
4: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
3: क्या परेशानी है?
4: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
3: तो वो तो भरता ही है।
4: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
3: अच्छा,
4: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
3: हाँ हाँ।
4: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
3: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
4: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
3: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
4: नहीं,
3: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
4: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
3: अच्छा।
4: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
3: अच्छा, कभी लेकिन मैं समझ रही हूँ।
4: हाँ, क्या समझ रही
3: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
4: डॉक्टर सविता।
3: हाँ जी,
5: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
3: हूँ।
5: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा मुर्गा।
3: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
5: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
3: कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: अच्छा बोतला खुल

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, किसी काउंटडाउन की रैंकिंग के बारे में कोई सवाल, बिंदास आके हिट मी अप. हफ्ते के टॉप 10 गानों के काउंटडाउन में एक नई एंट्री है. शो पर हम अपना 90s एंड 2000 का इंडी पॉप क्लासिक बजाने वाले हैं, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. संजू राठौड़ की आवाज की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे गाना, 16 हफ्ते हो गए इसको काउंटडाउन पर. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांटिक बैलेड ऑफ द सीजन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज जी की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, दिस वन हैज टेकन इंटरनेट बाय स्टॉर्म. गाने का नाम है दरमिया. मुसाफिर कैफे शो से है ये गाना एंड अपेरेंटली इट्स अ लव सॉन्ग ऑफ द सीजन. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो

0: वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: अरे बोल कौन रहा है
0: सर, ये वाला भेजने बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
0: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेजने सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
0: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजने सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या
0: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ
0: सर, आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ
0: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
1: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
0: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे तो पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
1: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
0: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
0: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बात समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
1: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
0: सेंट सर, ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
0: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची। Number 7. How chopper?

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री, KDS 54 एंड रॉन का गाना फीचरिंग श्रेया घोषाल, गाने का नाम है कल्याणी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 8।
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इन टॉप 10 गानों के बाहर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया इतनी डाइवर्स, इतनी वास्ट है, ऐसे इतने आर्टिस्ट, इतने गाने हैं जो शायद अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस गाने को सुन लेंगे, यू विल बी लाइक, ये कहां था अभी तक। फरक का तारे ऐसे एक गाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तारे उन गानों में से है जो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया, इतना पसंद आया दैट हमारे काउंटडाउन में टॉप 10 पर है। बट आई ट्रूली बिलीव दैट वी लिव इन अ टाइम जहां हम जो भी ढूंढना चाहें हमको सब मिल जाता है। इंटरनेट, AI, तो आपको इसके आगे और क्या सर्च करना चाहिए, 10 मोर थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, सब कुछ बता देता है। तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हमारी क्यूरियोसिटी इज अ बिगेस्ट करेंसी। क्यूरियोसिटी टेक्स अस टू प्लेसेस, एंड अगर यू आर वन ऑफ दोस क्यूरियस पीपल जिनको नए आर्टिस्ट, नए गाने डिस्कवर करने हैं, वो गाने जो अभी तक आपके एल्गोरिदम के थ्रू आप तक नहीं पहुंचे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट गाना डिस्कवर। ऑल द न्यू प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एक साथ क्यूरेटेड फॉर यू, हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एंड 10

100% गारंटी लेके कह सकती हूँ, व्हेन यू लिसन टू दोस सॉन्ग्स यू विल बी लाइक यार ये गाने अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं सुना है. सो फॉर ऑल यू क्यूरियस बेस्टीज, गाना डिस्कवर इज अ प्लेस फॉर यू. नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो भी उस प्लेलिस्ट में है. गाने का नाम है तारे, रिटन एंड कंपोज बाय फरक, फरक का ही म्यूजिक. 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार तारे इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद कृष्णा धंधन्योलीवाला का गाना बूम शाका, पिछले हफ्ते से 1 नहीं 2 नहीं 3 पोजीशन ऊपर जंप मार के बूम शाका इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. दोनों गाने बैक टू बैक, फरक का तारे ऑन नंबर 6, बूम शाका ऑन नंबर 5, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनका, एंजॉय. नंबर 6.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन। 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार आ रहा है। आई एम स्टिल नॉट बोर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, अ हरियाणवी पॉप सॉन्ग। आई एम सैट दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika. Now September जा रहा है, October आ रहा है, and I'm sure आपने तो notice कर ही लिया that मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का सबसे पहला signal ना हमको शाम दे देती है। दिन तो वैसे ही निकलता है। Maybe आप college में हो, office में हो, same traffic, same काम, same phone calls. लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, हवा बदलने लगती है, रोशनी थोड़ी soft हो जाती है, नई आवाजें, नई तरह की आवाजें, मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। एक तरफ हम पूरा दिन रैप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ we are really excited to start our day. And somehow, यार मुझे पता नहीं क्यों ये शाम का वक्त बड़ा emotional लगता है. Ever since I was a little kid, शाम को खेलने के बाद घर वापस जाना, मतलब sad वाला emotional नहीं, just I'm really aware of how I feel in the evenings. So obviously, full feelings वाली playlist भी है मेरे पास for these evenings. And I'm going to play my top pick for you today. गाने का नाम है शाम तन्हा by अग्नि.
2: शाम तन्हा,
0: कुछ तो है इस गाने में दैट हर साल ये गाना मुझे और अच्छा लगने लगता है। मोहन कनन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है ब्रो, इट्स लाइक कोई रश नहीं है, ही इज नॉट पुशिंग यू टू फील समथिंग, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील थिंग्स। एट आरजे करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर प्लीज आके मुझे बताना कि व्हाट डिड दिस सॉन्ग मेक यू फील। मैं तो इतना कुछ शेयर कर देती हूँ, इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ यहाँ पे, बट कुछ खास है इस गाने में। इट विल टेक यू बैक टू समथिंग, सम मेमोरी और एन इवनिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स फॉर ऑल दोस इवनिंग जहाँ पर आपको लगा कि कुछ खास हुआ भी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड दैट स्टिलनेस एंड आप उसे कितनी बार भी जी सकते हो। अग्नि द बैंड का गाना, मोहन कनन एंड अरिजीत की आवाज में, दिस इज शाम तन्हा प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तभी तो इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
3: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी।
2: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
3: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी।
2: गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार बाय द वन एंड ओनली कुमार सानू। ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट। इसकी मेलोडी में राइट देयर इन द कॉम्पोजिशन वो अर्ली 2000s वाली रोमांटिक एनर्जी है, विच इज वेरी इनोसेंट, थोड़ी फिल्मी बट बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड। आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स आरुष, जो पुणे से हैं। उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया ये गाना। आरुष, दिस वन इज फॉर यू। अकॉर्डिंग टू आरुष, ही इज लुकिंग फॉर लव एंड थोड़ी मुश्किल आ रही है। वो कहते हैं कि यार डेट पे जाने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आ रही है। सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड गो बैक टू दोज सिंपलर टाइम्स, जब लाइफ सिंपल थी और किसी को पसंद करना एक बहुत बड़ी डील होती थी। किसी के फोन के लिए वो पूरा दिन वेट करते थे, उनका नाम स्क्रीन पे देखकर बिना रीजन स्माइल करते थे, फिर रात को सोने से पहले वो सारी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिप्ले करते थे। आरुष ने मुझे वो नाम बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आई ट्रूली फील यू आरुष। दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिकट टू सिंपलर टाइम्स, जहाँ बस कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप तक जाना, साथ में चलना ही डेट लगती थी। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। रियल लाइफ में आई माइट नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, बट इस गाने में इट वर्क्स आउट। कुमार सानू की आवाज में दिस इज तेरा मेरा प्यार ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

पहला प्यार, पहली नजर वाला, कुमार सानू की आवाज, ये इतना इमेजिनेटिव है। आई थिंक फर्स्ट लव का जो मेगा मैजिक है वो इसी में है, दैट उस वक्त किसी को पता ही नहीं है दैट ये मेमोरी आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी मेमोरी बन जाएगी। कुमार सानू की आवाज में दैट वाज तेरा मेरा प्यार ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s एंड 2000s के वो गाने जो आपको आज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंपल टाइम्स में ले जाते हैं, हमारे साथ आके शेयर करो। मैं और अश्काय माय प्रोड्यूसर, हम दोनों आपके रिकमेंडेशंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नाउ बैक द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। बाजरा हितेन शर्वी यादव का गाना, गाने का नाम है बैंगर। 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक बैंगर इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद मिट्टा रोर का शीशा, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले 4 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, दिस वीक ऑल्सो ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगर ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बसे इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Indie Top 10. Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
1: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
1: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो स्टार्ट्स इन 5, 4, 3, 2, 1, go!
2: हिट गाना सुनना आसान है, ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ। और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर है। लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ। किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया और कैसे एक गाना फिल्म से निकलकर हमारी जिंदगी में उतर गया। Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूं सुरेन, गाने आपके, कहानियां मेरी। And we kickstart the countdown with गाना नंबर 20, ऊंचा लंबा कद, the rehashed version from Welcome to the Jungle.
3: Number 20.

0: फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जैसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने।
1: अरे
0: या फिर बाजीराव सिंघम, दीज आर अजय देवगन्स टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। लेकिन मेरे लिए पर्सनली विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए VFX, एक्सप्लोजन्स इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। एंड बिफोर आई गेट टू दृश्यम, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी हैपेंस टू बी गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, वेल दृश्यम की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। This is Vingansa, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिल खान के शब्द, from Drishyam, the conclusion.
2: Number 18.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: मिस्टर कुमार. हेलो सर, हाउ आर यू?
1: फाइन.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में. मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं.
1: नहीं, आप
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा.
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए. मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए.
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार.
2: सैटरडे चार बजे सर. थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
1: हाँ.
2: सर थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर. सर कितने बजे बताया आपने? एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को.
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा.
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो साढ़े 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना. तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर. सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर.
1: हाँ मिलते हैं.
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे. सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज.
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ. ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे.
2: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए.
1: 7 बजे
2: सर. मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर. आप 7 बजे के अलावा कभी भी.
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को.
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे.
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर. मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी. संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे. तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा. तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो.
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए मुझे.
2: मैं पहले अपने ही निकाल
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 16.

Shararat in the voices of Jasmine Sandlars and Madhubanti Bagchi. Ekdam unapologetic Bollywood madness. Aur shayad isliye ye gana yaad reh jata hai. Lekin ek gana countdown se bahar ho chuka hai. Iska exit mujhe genuinely surprise karta hai. To phir aao. Now, आवारापन 2 के तीन गाने अभी भी चार्ट्स में हैं, लेकिन आवारापन की ओरिजिनल फिल्म का ये गाना तो फिर आओ अब इस काउंटडाउन पे नहीं है. एंड मुझे लगता है इसका एक रीजन है. कभी कभी किसी गाने को अच्छा सिंगर नहीं सही आवाज चाहिए होती है. उसमें एक खास मैस्कुलिन वजन की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज जो हार्ट ब्रेक को फील भी करे और कैरी भी करे. Somehow I always thought के यार ये गाना एक सिंगर की आवाज में बहुत अच्छा लगता. And that singer is Fahim Abdullah. अगर कोई इस गाने को वो पुरानी रूह, वो darkness और वो अच्छी पकड़ दे सकता था, then in my eyes I thought it could have been Fahim. और फिर Fahim ने अपने social media पर इसका एक cover गा के डाल दिया.

0: बस दर्द वही है, लेकिन आवाज का वजन बदल गया और गाना भी। और शायद इसलिए आवारापन टू का म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है। ये पुरानी फिल्म को रिपीट नहीं कर रहा है, ये अपनी आवाज ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्होंने तो फिर आओ गाया है इन आवारापन टू, उनका डेब्यू सॉन्ग हैपेंस टू बी वे जुनून, कंपोज्ड बाय दिस जीनियस कॉल्ड मिथुन और लिखा है सईद कादरी साहब ने। दिस वन इज अ नंबर 15 फ्रॉम आवारापन टू।
1: नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: सांसों की माला पे मिर्जापुर की पूरी एल्बम में मेरा सबसे फेवरेट गाना। एंड इसकी कहानी बहुत पुरानी है, मीराबाई और कृष्ण जी के बीच जो एक समर्पण की लोक कथा है, ये कॉम्पोजिशन उस एहसास से जुड़ा हुआ है। और ये मास्टरपीस तुफैल होशियारपुरी नाम के कवि को एट्रिब्यूटेड है। लेकिन जिस आवाज ने इस कॉम्पोजिशन को पूरी दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना दिया, वो आवाज थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की। और नुसरत साहब को याद करते वक्त एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, उनकी कला को सल्यूट करना किसी मुल्क की सियासत को सर्टिफिकेट देना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक महान आर्टिस्ट का हिसाब चुका रहे हैं, उस इन्फ्लुएंस का जो उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक पर छोड़ा। थिंक ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, निट खैर मंगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है मेरे रश के कमर, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, मेरा पिया घर आया। यार कुछ रिक्रिएट हुए, कुछ की ट्यून्स को नए लिरिक्स, नए सिचुएशंस और नए नाम मिले, कुछ तो चुराए भी गए, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि नुसरत साहब की मेलोडिक वोकैबुलरी हिंदी फिल्म म्यूजिक का हिस्सा बन गई। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है एआर रहमान का एक गाना, जो उन्होंने नुसरत साहब के एक बहुत ही मशहूर गाने सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना से प्रेरित होकर मणिरत्नम की फिल्म गुरु के लिए एक कॉम्पोजिशन बनाई थी। और वो गाना था तेरे बिना, रिटन बाय गुलजार साहब, संग बाय एआर रहमान हिमसेल्फ। दिस हैपेंस टू बी माय पिक ऑफ द वीक।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 12।

0: तमन्ना भाटिया,
1: वी हैव अ प्रॉब्लम। एंड पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे तमन्ना भाटिया के डांस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये गाना स्त्री का बहुत ज्यादा पसंद है।
2: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए।
1: एंड देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये वाला गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके अलावा भी देयर क्वाइट अ फ्यू डांस नंबर्स। एक और याद आ रहा है यार, रेड 2 में गाना आया था नशा करके, एंड तमन्ना इन गानों में कमाल करती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड के बेस्ट डांस नंबर्स की बात करोगे तो तमन्ना का नाम डेफिनेटली टॉप 3 स्पॉट्स में होगा। प्रॉब्लम गानों से नहीं है, प्रॉब्लम इमेज से है, क्योंकि तमन्ना साइंड अप फॉर दिस अपकमिंग फिल्म कॉल्ड वन अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहाँ पे तमन्ना का एक प्रॉपर एक्टिंग रोल है। लेकिन उसका एक गाना आया है कॉल्ड ठुमक ठुमक, एंड वहां पर भी तमन्ना भाटिया इज डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन दी सॉन्ग्स दैट आई जस्ट मेंशन। वही ग्लैमर, वही अदाएं, वही सेंसुअलिटी, वही स्क्रीन परसोना। देखो, अगर तमन्ना सच में चाहती थी कि ऑडियंस उनको एक पर्टिकुलर इमेज में ना देखे, तो फिर उनको उस इमेज से जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इमेज इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने का फैसला एक एक्टर को करना पड़ता है। आप एक फिल्म में कैरेक्टर बनकर आओ और अगले ही मिनट ऑडियंस को वही पुरानी तमन्ना दिखा दो जिसे वो डांस नंबर्स में देखने की आदत डाल चुके हैं, तो फिर ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, वो बस वही देखेगी जो आप उसे बार बार दिखाते आए हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप है। पहले वो आपकी एक इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को वो हिट बनाता है, और जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो वही इमेज आपको वापस खींच लेती है। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं जिनसे एक्टर को नहीं पूरी जेनरेशन को कम्पीट करना पड़ता है। श्रीराम की छवि भी उन्हीं में से एक है। पिछले हफ्ते जिस भक्ति की प्रार्थना ने हमें पहली बार दर्शन दिए थे, इस हफ्ते वो नंबर 11 पर है। ये है जय जय राम राम रामायण।
3: नंबर 11।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इधर।
2: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
2: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
2: कोहली।
1: अरे तू भी यस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट। Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बरजातिया ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बरजातिया ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल ये है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बरजातिया से।
1: Somewhere I feel complete now. Even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there, I have two granddaughters at home. So somewhere up, main kuch dena chahta hoon. Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director wohi hota hai jo kuch kehna chahta hai. So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, main kahin phansta hoon har film mein because main goodness mein aur goodness karna chahta hoon. To wo mere apne issues hai, but this is one of my most progressive and favorite films.
0: Generations को साथ रखना और अपनी values को compromise किए बिना उन्हें आज के cinema में लेकर आना, शायद सूरज जी की सबसे progressive बात यही है कि उन्होंने वक्त के साथ अपनी values बदलने से इनकार कर दिया और अब इसी दुनिया में melody लेकर आ रहे हैं Bollywood के ultimate hit machine, the man who collaborated with सूरज बरजातिया on Prem Ratan Dhan Payo, Himesh Reshammiya. नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रेया घोषाल।
2: नंबर 9

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7

तवाही नाम का गाना खत्म जरूर हुआ है, लेकिन असली तवाही तो सलमान खान ने मचाई हुई है। भाई ने बिग बॉस पर उन ट्रोल्स और उन जर्नलिस्ट को सीधा निशाने पे ले लिया जिन्होंने क्रिटिसिज्म और कैरेक्टर असैसिनेशन के बीच की लाइन ही मिटा दी थी। फिल्म बुरी है तो बोलो, एक्टिंग खराब है फिर भी बोलो, अगर वजन मेरा बढ़ गया है उस पर भी बोलो, लेकिन पर्सनल होने का लाइसेंस वो किसी को नहीं मिला है। और फिर सलमान खान ने उन जर्नलिस्ट को भी कॉल आउट किया जो एक्ट्रेसेस की तस्वीरें खींचकर उनके बॉडी पार्ट्स को जूम करके सोशल मीडिया पर बेचते हैं। उसे जर्नलिज्म कहना जर्नलिज्म की इंसल्ट होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं है, दैट इज चीप वॉयरिज्म। और जर्नलिस्ट या पत्रकार नाम का शील्ड पहन लेने से वो रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाता। और मुझे सबसे ज्यादा मजा एक आयरनी में आता है, बॉलीवुड में लाइन क्रॉस करना सलमान खान से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बार भाई ने लाइन क्रॉस नहीं की, भाई ने एक नई लाइन खींच दी है। और जब कोई इंडस्ट्री के अंदर से इस टॉक्सिक कल्चर को रोकने की बात करता है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। बाय द वे, द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द चार्ट्स इज चुनरी चुनरी जो है फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, लेकिन ओरिजिनल वाले में सलमान भाई का स्वैगर याद है। नंबर 6।

0: तो वेल, आज उसी भाई के नाम, सलमान खान के नाम, मेरा रीवाइंड ट्रैक। वो बात जो जर्नलिस्ट एंड ट्रोल्स की क्लास लगाने के बाद वो बिंदास बोल सकते हैं। बॉलीवुड, मैं हूँ हीरो तेरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड। आँखों

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi.
1: इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: हेलो,
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए.
2: तो सविता बोल रही हूँ.
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं. उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था.
2: क्या परेशानी है?
3: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है.
2: तो वो तो भरता ही है.
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है. जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार.
2: अच्छा,
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना. पानी पीता हूँ ना मैं जब भी.
2: हाँ हाँ.
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है.
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है.
3: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए.
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं.
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं. अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है.
2: अच्छा.
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है.
2: अच्छा, लेकिन ना, मैं समझ रही हूँ.
3: हाँ, क्या समझ रही
2: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है. आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से. मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज. आप नावेद बाबा बोल रहे हैं?
3: डॉक्टर सविता.
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं. आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही हूँ.

0: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3 कुकड़ू को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
2: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट नंबर 5।

0: अमित त्रिवेदी का ये गाना बिना किसी एफर्ट के मूड हल्का कर देता है यार। लेकिन रोमांस की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग चेंज जरूर आया है। पहले रोमांटिक गाने आते थे और उसके साथ में लव स्टोरी भी मिल जाती थी। प्राइम एग्जांपल फॉर एवर विल बी दिस सॉन्ग।
1: हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना।
0: फिर हमें रणबीर और दीपिका दिखे। सिर्फ पिछले साल हमें एक लव एंथम भी मिला।

आज जब इन गानों को सुनते हो तो एक कहानी सामने आ जाती है, लेकिन आजकल कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको कहानी देते ही नहीं, इनफैक्ट आपको जगह देते हैं अपनी कहानी बनाने की। वारू फॉरएवर ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि 2018 में जब मिर्जापुर आई थी ये गाना उसी टाइम पर हमने पहली बार सुना था, लेकिन ये गाना अब सीरीज से बाहर निकल गया है। कपल वीडियोस, हार्टब्रेक एडिट्स, वेडिंग मोंटाजेस, अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी यादें। मिर्जापुर ने सिर्फ गाना दिया था, इंटरनेट ने उसका रोमांस लिख दिया। और शायद आज रोमांटिक गानों की डेफिनेशन भी बदल रही है। पहले गाना आपको लव स्टोरी दिखाता था, आज गाना आपको अपनी लव स्टोरी दिखाने की जगह देता है, क्योंकि

द डायरेक्टर ऑफ देयर ओन लव स्टोरी और अपनी कहानी में सब शाहरुख खान है। और वही गाना रोमियो श्रेया घोषाल की आवाज में मिर्जापुर द मूवी में एक नई जिंदगी लेकर आ रहा है। ऑन नंबर 3 प्रोबेबली द फास्टेस्ट क्लाइमर ऑफ द मिर्ची टॉप 20 ये है वारूं फॉरएवर। नंबर 3

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना आई एम श्योर कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना, लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ, बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, एंड दैट ब्रिंग्स अ क्लोज टू दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20। ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यहीं ऑन द मिर्ची टॉप 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।